सबसे पहले तो शुक्रिया सेकंड ईयर स्टूडेंट्स का, जिन्होंने हम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए आज ये शानदार पार्टी दी है. थैंक्स अ लॉट, वी विल मिस यू. हमारे लिए कॉलेज का ये आखिरी दिन है और मैं जानता हूं कि आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है. और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

0: ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਏ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0203-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर
2: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है
1: मिलिए डॉक्टर मखर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से
2: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देती है मुकम्मल केयर
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है
2: नए पेशेंट्स का खैर मुकदम है और वॉक-इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं
1: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल करें 587-360-6890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक
2: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी
3: नमस्ते सत श्री अकाल आदाब यू आर लिसनिंग टू कैलगरी'स मोस्ट पॉपुलर रेडियो रेडियो सबरम 94.7 FM
4: टेक योर बिजनेस बियॉन्ड वॉल्स एंड स्ट्रेट टू योर ऑडियंस Sabrong Radio now comes live to your location, bringing energy, excitement, and real-time engagement. From store openings to special events, from product launches to community celebrations, we don't just promote your business, we create an experience your customers remember. Our team reaches your venue, connects with the crowd, and broadcasts your brand across a wide 250-kilometer network. More visibility, more trust, more customers. Let your business be seen, heard, and celebrated. Book your live promotion today with Sabrong Radio. Your brand, on air and on ground. Visit sabrong.ca or call 403-400-0203.

0: ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਏ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर
2: पेश है लाइफ लाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है
1: मिलिए डॉक्टर मघर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से
2: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देते हैं मुकम्मल केयर
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप्स तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है
2: नए पेशेंट्स का खैर मकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं
1: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल 587-360-6890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक
2: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी
3: अपने बिजनेस को दीवारों से बाहर निकालिए और सीधे अपने ग्राहकों तक पहुंचाइए सबरंग रेडियो अब आता है लाइव आपके लोकेशन पर जहां होता है एनर्जी एक्साइटमेंट और रियल कनेक्शन चाहे हो आपकी शॉप ओपनिंग कोई खास इवेंट प्रोडक्ट लॉन्च या कम्युनिटी सेलिब्रेशन हम सिर्फ प्रमोशन नहीं करते हम आपके ब्रांड को एक यादगार अनुभव बना देते हैं हमारी टीम पहुंचती है आपके पास लोगों से जुड़ती है और आपकी पहचान को फैलाती है पूरे 250 किलोमीटर के नेटवर्क में ज्यादा पहचान ज्यादा भरोसा ज्यादा ग्राहक अपने बिजनेस को बनाइए खास दिखाइए सुनाइए और सेलिब्रेट कराइए आज ही बुक कीजिए सबरंग रेडियो के साथ आपका ब्रांड ऑन एयर भी और ऑन ग्राउंड भी Monday, Tuesday, Thursday, and Friday, 7 to 8 p.m. Sunday, 1 to 5 p.m.
4: Asia Pacific Immigration Consulting Limited. Student visa, visitor visa, super visa, LMIA applications, family immigration, provincial nominee application, ate citizenship application which lamba tajruba te maharat rakhta hai. Tuhadi sahulat layi main Maninder Singh Dhillon ate Inderjot Kaur Dhillon ikko chhat hai. Immigration ate insurance diyan sewawan pradan karde hain. Sanu sampark karne layi 403-225-1111. Maninder Singh Dhillon, Asia Pacific Immigration Consulting Limited.
5: Regulated Canadian Immigration Consultant.
4: 403-225-1111

0: पूरी सुनते हैं
1: ते
0: फिर
2: बच्चे को ये सोच के डांट रहे हो कि तुझे मैथ्स क्यों नहीं आता, आप बच्चे को ये पकड़ के पीट रहे हो, तेरे को पहाड़े लर्न क्यों नहीं हो रहे, तेरे को टेबल लर्न क्यों नहीं हो रही, अरे सोच के डांट रहे हो कि तुझे मैथ्स क्यों नहीं आता, आप बच्चे को ये पकड़ के पीट रहे हो, तेरे को पहाड़े लर्न क्यों नहीं हो रहे, तेरे को टेबल लर्न क्यों नहीं हो रही, अरे बच्चे को गार्डन में लेके जाओ। जिस बच्चे को आपने सोचा है कि इसको पढ़ाई नहीं आती, इसको अंग्रेजी नहीं आती, वो बच्चा सिर्फ पत्ते देख के बता देगा कि ये कौन सी फसल है। वो पता है बहुत सारे लोग आज भी बहुत सारी डिग्रियां लेने के बाद भी ये नहीं बता सकते कि उन्हें खुशी किस चीज से मिलती है। उनसे ये पूछो डिग्री कर ली, हाँ, नौकरी लगे हुए हो, हाँ, सुबह से शाम जाते हो, कि हाँ, अगला सवाल पूछो, खुश हो, जवाब नहीं होता उनके पास। रीजन क्या है? वो फेल हो गए सेल्फ स्मार्ट बनने में। जिस एजुकेशन सिस्टम के बेसिस पर बच्चों को हम गालियां देते हैं, ये कर वो कर, तूने कुछ नहीं किया, ये नहीं किया, वो एजुकेशन सिस्टम तो सिर्फ तीन चीजों को जोर देता है, अंग्रेजी आनी चाहिए, मैथ्स फास्ट होना चाहिए, कैलकुलेटर बन जाओ बस, और तीसरे नंबर पर जीके बहुत अच्छा होना चाहिए। यहां तो हार्वर्ड गार्डनर साहब दूसरी बात कर रहे हैं। नमस्ते, क्या पढ़ाई करना, क्लास टॉप करना ही इंटेलिजेंस है? इस पे बात चल रही है। इमेजिन कीजिए एक बंद कमरा है, क्लिनिक के अंदर का सेटअप है, एक साइकेट्रिस्ट बैठा है, एक साइकोलॉजिस्ट बैठा है, एक कोई माहिर डिग्री का खिलाड़ी बैठा है, और एक बच्चे का आईक्यू नाप रहे हैं कि भाई आईक्यू क्यों नाप रहे हो, कि हम ये देखेंगे ये बच्चा कितना इंटेलिजेंट है। अब मैंने उनसे पूछ लिया कि बताइए कैसे नापोगे इसका इंटेलिजेंट होना, तो बोले सर हम इससे अलग अलग सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछेंगे। कैसे? कि हम इससे पूछेंगे बताओ बेटा एलिफेंट का स्पेलिंग क्या होता है, बताओ बेटा पाइनएप्पल का स्पेलिंग में APPL आता है या APL आता है, बताओ बेटा दो और दो चार होता है या नहीं होता है, बताओ बेटा A+B का होल स्क्वायर क्या होता है, या फिर हम इसको रीजनिंग के क्वेश्चन पूछेंगे, लॉजिकल रीजनिंग, इससे पूछेंगे कि बताओ तुम्हारी मम्मी के मामा का बेटा तुम्हारा क्या लगा। हम इस बच्चे से डायरेक्शन के क्वेश्चन पूछेंगे, हम इस बच्चे को क्वेश्चन पूछेंगे एक ट्रेन अगर इस डायरेक्शन में जा रही है, हवा इधर चल रही है, तो उसका धुआं किधर उड़ेगा। मतलब पढ़ाई ही इंटेलिजेंस है, और अगर पढ़ाई ही इंटेलिजेंस है तो एक सवाल दिमाग में आता है जो उनसे पूछने का मन होता है। राजस्थान के गांव में एक बच्चा है, 12-13 साल उम्र है, कभी स्कूल नहीं गया, और वो बच्चा उस पत्थर को तराश के मूर्ति बना देता है, और वो मूर्ति 15,000, 20,000, 25,000, 1,00,000 रुपए तक बिकती है। क्या वो बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है? अगर पढ़ाई करना, क्लास टॉप करना ही इंटेलिजेंस है, तो उस आदमी का क्या जो आदमी एक नाव में बैठ के बिना स्कूल जाए पूरी दुनिया घूम के आ जाता है, और लास्ट में आके लोगों को बताता है कि देखो समंदर में जिंदा रहने के ये तरीके होते हैं, तारों को देख के दिशा कैसे देखते हैं, ये किसी इंटेलिजेंट ने नहीं बनाया, सालों पहले ऐसे लोगों ने बनाया जो कभी स्कूल नहीं गए थे। अगर पढ़ाई करना और क्लास टॉप करना और वो रट्टे मारना जो टीचर पढ़ा रहा है वही इंटेलिजेंट है और वही IQ है, तो फिर एक सवाल और आता है। केरल में एक मार्शल आर्ट होती है कल्लरी पट्टू, शॉर्ट में कल्लरी बोलते हैं, ऐसा कहते हैं कि दुनिया की सबसे पहली मार्शल आर्ट यही थी। कल्लरी को सीखने वाली 10 साल की लड़की 10 लड़कों से अकेले लड़ सकती है, क्या वो इंटेलिजेंट नहीं है? क्या वो IQ नहीं है? अगर यही IQ है तो छत्तीसगढ़ में चलो मेरे साथ, वहां आदिवासियों के बच्चे अकेले उस जंगल को क्रॉस कर जाते हैं जिसको बड़े बड़े ऑफिसर्स ट्रेनिंग लेने के बाद क्रॉस नहीं कर सकते, क्या वो IQ नहीं है? क्या एग्जिस्टेंस बनाए रखना, क्या अपने आप को अपोजिट सर्कमस्टेंसेस में ढाल के रखना, क्या अपने आप को मेंटेन करके रखना, अपना सर्वाइवल इंश्योर करना, ये IQ नहीं है? अगर सिर्फ पढ़ाई ही IQ है तो उन लोगों का क्या जो कथक के एक मूव पे हजारों लोगों को मजबूर कर देते हैं तालियां बजाओ? अगर सिर्फ पढ़ाई करना ही IQ है तो फिर उन बच्चों का दिमाग कैसे नापोगे जो दो पत्थर के टुकड़े लेके और ऐसा आवाज निकालते हैं आप मजबूर हो जाते हैं वाह वाह करने को? अगर पढ़ाई करना ही IQ है तो सारंगी वाले की सारंगी कहां से जनाब? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो हमारे इंटेलिजेंस नापने के पैमाने में गड़बड़ है। ये बात जो मैं बोल रहा हूं ये मुझसे पहले सोचने वाले जो थे वो थे प्रोफेसर, प्रोफेसर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में थे, और प्रोफेसर का नाम है हार्वर्ड गार्डनर। हार्वर्ड गार्डनर जी आज 80 साल से ऊपर के हो चुके हैं और मैं चाहता हूं ये सदियों तक जिए। रीजन क्या है? हार्वर्ड गार्डनर दुनिया को एक ऐसी चीज देके गए जिसने बहुत सारे लोगों की जिंदगी बचा ली। एक टाइम था जब इंटेलिजेंट उसको माना जाता था जिसमें इंटेलिजेंस है, और इंटेलिजेंस कौन है कि साहब इंटेलिजेंस है आपको सवाल करने आते हो, आपको पढ़ाई करना आता हो, आपको स्पेलिंग याद रहती हो, आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो, आपकी मैथ्स अच्छी हो, आप इंटेलिजेंट हो। हार्वर्ड गार्डनर साहब कहते हैं नहीं सर, अगर इंटेलिजेंस और IQ यही होता तो फिर लोगों में दूसरे जो गुण हैं उनको कैसे मेजर करोगे आप? तो हार्वर्ड गार्डनर साहब को पूछते हैं भाई बताओ कैसे। तो उन दिनों हार्वर्ड गार्डनर साहब करीब 20 साल तक इन्होंने क्लिनिकल सेटअप में साइकेट्रिस्ट के साथ काम किया। हार्वर्ड इन्होंने बाद में ज्वाइन किया है। अब हार्वर्ड ज्वाइन करने के टाइम इन्होंने वहां पे स्कूल ऑफ एजुकेशन जो है जहां पे BEd जैसे कोर्स चलते हैं उन लोगों को ट्रेनिंग देने का काम शुरू किया। अब हार्वर्ड के अंदर बैठ के जब आप बात कर रहे हो कि इंटेलिजेंस नहीं इंटेलिजेंसेस होती हैं, कि ये क्या होता है कि बुद्धि एक तरह की नहीं होती, बहुत तरह की होती है, और तब ये कॉन्सेप्ट लेके आते हैं जिसको बोलते हैं इंटेलिजेंस नहीं बल्कि क्या इंटेलिजेंसेस, मतलब कि देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। तो इनकी एक बुक है, कभी टाइम मिले तो जरूर पढ़ना, बुक का नाम है फ्रेम्स ऑफ माइंड। ये फ्रेम्स ऑफ माइंड में

हावर्ड गार्डनर साहब एक अनोखी बात करते हैं, ये कहते हैं हर बच्चा इंटेलिजेंट है। इनसे पूछा गया कि बताओ कैसे, तो इस किताब में ये समझाते हैं कि इंटेलिजेंस जिसको हम कहते हैं वो इंटेलिजेंसेस होती हैं और ये 8 तरह की होती हैं। कि कैसे, तो फिर ये बताना शुरू करते हैं कि जिसको आप आईक्यू कहते हो वो आपका जो आईक्यू निकालने का तरीका है मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज या उसकी रियल एज इनटू 100, उसको आप कैसे निकाल रहे हो उससे मुझे प्रॉब्लम है। तो हार्वर्ड गार्डनर साहब क्या बोलते हैं कि जो आप इंटेलिजेंट कह रहे हो, जिसको आप इंटेलिजेंस कह रहे हो, उसके अंदर शामिल करो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस को। तो जो 8 तरह की इंटेलिजेंस हार्वर्ड गार्डनर साहब बताते हैं उनमें सबसे पहली इंटेलिजेंस है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। लिंग्विस्टिक यानी लैंग्वेज। तो हार्वर्ड गार्डनर साहब कहते हैं वो बच्चा भी इंटेलिजेंट है भले ही उसे मैथ्स नहीं आता हो, भले ही उसे साइंस से नफरत हो, भले ही उस बच्चे ने कभी स्कूल में कदम नहीं रखा हो, लेकिन अगर उस बच्चे को किसी लैंग्वेज पे कमांड है वो बच्चा इंटेलिजेंट है। इसे हार्वर्ड गार्डनर साहब कहते हैं लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। हार्वर्ड गार्डनर साहब कहते हैं ये बच्चे वर्ड स्मार्ट होते हैं। वर्ड स्मार्ट मतलब ऐसे लोग जिनके पास वोकैब बहुत अच्छी हो। ये लोग जब बात करते हैं तो शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करते हैं। आपने कभी सोचा है कि कुछ आईटी इंजीनियर्स अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होने के बाद भी परेशान रहते हैं? उनको लिटरेचर पढ़ने में बड़ा मजा आता है और लाइफ के 30-40 साल जीने के बाद उनको पता लगता है यार मेरे को इंजीनियर बनना ही नहीं था, मैं क्यों बना इंजीनियर, मेरे को तो लिटरेचर पढ़ना था। और कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके मम्मी पापा उनको लिटरेचर इसलिए दिलवाते हैं बेटा इंग्लिश लिटरेचर ले लो, इसमें मार्क्स अच्छे आएंगे तुम्हारे। क्यों ले लो? क्योंकि अंकल बोल रहे हैं, सिर्फ अंकल ने बोला इसलिए इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट उठा के घुस गए उसमें। ऐसे नहीं होता। हार्वर्ड गार्डनर कहते हैं कि जिन बच्चों को अपना करियर जर्नलिज्म में बनाना है, जिन बच्चों को ऑथर बनना है, जिन बच्चों को टीचर बनना है, जिन बच्चों को लॉयर बनना है, उन बच्चों में लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस अगर हो यानी भाषा का ज्ञान अगर उनमें हो तो वो बच्चे जो है बहुत अच्छा करते हैं। सिस्टम क्या करता है? सिस्टम बच्चे पे सिर्फ थोपता है कि तेरा मन है या नहीं है, तेरे अंदर वो वाला इंटेलिजेंस है या नहीं है, तेरे को ये सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, दैट्स ऑल। ये पहले तरह का इंटेलिजेंस है। और मान के चलिए ये सेशन खत्म होने तक आप सब मानेंगे कि हर बच्चा इंटेलिजेंट है। अगर उस बच्चे के इंटेलिजेंस पे क्वेश्चन आ रहा है तो ये क्वेश्चन उस बच्चे पे नहीं है, आपके सिस्टम पे है, जिसे आप एजुकेशन सिस्टम कहते हैं। दूसरी बात, दूसरे तरह के इंटेलिजेंस लोग जो हार्वर्ड गार्डनर साहब के अकॉर्डिंग है वो है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस वाले लोग। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, इसका मतलब क्या है? हार्वर्ड गार्डनर साहब इनको कहते हैं नंबर स्मार्ट। ये वो लोग हैं जो नंबर्स से डील करने में स्मार्ट होते हैं। मतलब ये लोग डिजिट्स, काउंटिंग, मल्टीप्लीकेशन बहुत जल्दी जल्दी करते हैं। ये इंजॉय करते हैं लॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, इनको मजा आता है लॉजिकल प्रॉब्लम। जैसे कि इनसे पूछो कि भाई यहां ये हो रहा है, यहां ये हो रहा है, तो इसका कनेक्शन क्या होगा, दे इंजॉय दिस थिंग। फिर उसके बाद ये कहते हैं रीजनिंग बहुत अच्छी होती है बच्चों की। ये वो बच्चे हैं जिनको साइंटिस्ट बनना चाहिए, ये वो बच्चे हैं जिनको मैथ्स लेना चाहिए, ये वो बच्चे जिनको इंजीनियर बनना चाहिए, इन्हीं बच्चों को कोडिंग में जाना चाहिए, ऐसा हार्वर्ड गार्डनर साहब कहते हैं। तो मतलब दो तरह की इंटेलिजेंस हमने देख ली है हार्वर्ड गार्डनर साहब की। तीसरे तरह की इंटेलिजेंस जिसकी बात हार्वर्ड गार्डनर साहब करते हैं वो है स्पैशियल इंटेलिजेंस। जो स्पैशियल इंटेलिजेंस या स्पैटियल इंटेलिजेंस होती है, स्पैटियल का मतलब ये लोग जो होते हैं ये किसी चीज को जब देख लेते हैं, जैसे कमरे में घुसे। आपने कभी सोचा है कि कमरे में घुसे, आपको मैं ये पूछूं आपके कमरे का साइज क्या है, तो हो सकता है आपने इंजीनियरिंग की डिग्री कर रखी है तो भी आप नहीं बता पाओ अंदाजे से। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी जगह जाके आए और आने के बाद बात चल रही है कि भाई वो कमरे का साइज क्या था। एक अनपढ़ आदमी बता देता है कि यार वो कमरा शायद 8x10 फुट का था, और कमाल की बात है वो साइज जो उन्होंने बताया वही साइज निकलता है उसका। ये क्या था? ये उसका स्पैटियल इंटेलिजेंस या स्पेशियल इंटेलिजेंस था। मतलब जगह जो है उसको विजुअलाइज कर लेते हैं ये लोग। तो इन लोगों को क्या करना चाहिए? ऐसा कहा जाता है इन लोगों को आर्किटेक्ट बनना चाहिए। क्यों? आर्किटेक्ट में क्या करना है? आपको देखना है कि कैसे चीजों को डिजाइन कर सकते हैं। इंटीरियर डिजाइनर बन सकते हैं लोग, बहुत अच्छे पायलट बनते हैं लोग, बहुत अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हैं लोग। ये लोग बहुत अच्छे होते हैं चीजों को पहचानने में, ये बहुत अच्छे होते हैं जगह को पहचानने में। ये बात हो गई तीसरे तरह की इंटेलिजेंस की। फिर आता है चौथे तरह का इंटेलिजेंस। ये बड़ा मस्त लगता है मुझे। रीजन क्या है कि आई लव खेलकूद, और खेलकूद वाले बच्चे बड़े अच्छे लगते हैं मेरे को। स्कूलों में अक्सर कहा जाता है कि पढ़ना है, बस पढ़ना है, पढ़ना है, खेलकूद कुछ नहीं है। खेलना भी इंटेलिजेंस है, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कह रहे हैं। अगर कोई बच्चा खेलने में अच्छा है, जैसे आप जिमनास्ट का कर्तव्य कराओ, सारे बच्चे एक जैसा नहीं करेंगे। आप बच्चों को बोलो साइड किक करो, आप बच्चों को बोलो मवासी गिरी करो, माई गिरी करो, एक किक्स होती है अलग अलग तरह की। आप बच्चे को बोलो पंच मारो, सारे बच्चे एक जैसा नहीं कर सकते। आप बच्चों को बोलो डांस करो, सब नहीं कर सकते। कुछ लोग एक स्टंट को करने में डरेंगे, दूसरे को मजा आएगा। तो हार्वर्ड गार्डनर साहब कहते हैं ये एक तरह का इंटेलिजेंस है जिसे कहते हैं बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। अब अगर आप देखेंगे शहरों में हो क्या रहा है, हर माँ अपने बच्चे को डांस क्लास भेज रही है, हर माँ अपने बच्चे को मार्शल आर्ट सिखाना चाहती है, हर माँ अपने बच्चे को जिमनास्ट बनाना चाहती है। ऐसे नहीं होता। हार्वर्ड गार्डनर साहब ये कहते हैं जिन बच्चों का ये वाला आईक्यू मतलब बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस हाई होता है वो बच्चे बॉडी स्मार्ट कहलाते हैं। बॉडी स्मार्ट बच्चे जो होते हैं वो फिजिकल एक्टिविटी में बहुत अच्छा करते हैं, वो बच्चे बहुत एक्सीलेंट होते हैं बॉडी ब्रेन कोऑर्डिनेशन में।
इन बच्चों को पढ़ाई में धकेलने के बजाय थोड़ा सा स्पोर्ट्स में डाल दिया जाए, ये बच्चे बहुत अच्छा

करते हैं। एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर, एग्जाम्पल विराट कोहली, एग्जाम्पल शोएब अख्तर, एग्जाम्पल और 50 भरे पड़े हैं, माइकल फेलिप्स, एग्जाम्पल माइक टाइसन, यंगेस्ट हैवीवेट चैंपियन, एग्जाम्पल मोहम्मद अली। इनमें से एक भी नहीं मिलेगा आपको जिसको घर वालों ने यह कहा कि तू पढ़ता नहीं है इसलिए तेरा जो है लाइफ खराब है। ऐसे बच्चे जो बॉडी स्मार्ट होते हैं ये कहां बहुत अच्छा करेंगे, ये बहुत अच्छे एथलीट बनते हैं, सुपर एथलीट, जेसी ओवेंस, माइकल फेलिप्स, सब यही यहीं से निकले। ये बच्चे बहुत अच्छे डांसर बनते हैं, ये बच्चे बहुत अच्छे सर्जन भी बन सकते हैं, और तो और ये बच्चे बहुत अच्छी एक्टिंग भी कर सकते हैं। कौन से बच्चे? जो बॉडी स्मार्ट होते हैं। तो अब तक हमने चार तरह के इंटेलिजेंस देख लिए हैं, आगे चलते हैं और कौन से तरह का इंटेलिजेंस होता है। अगला आता है म्यूजिकल इंटेलिजेंस। म्यूजिकल इंटेलिजेंस को मैं इस तरह से समझाना चाहूंगा कि आपने देखा होगा कि कुछ लोग गाना सुनते हैं, ध्यान से सुनना ये बात बहुत गहरी है, कुछ लोग गाना सुनते हैं, कुछ लोग गाने की धुन सुनते हैं, कुछ लोग गाने के बोल सुनते हैं। अब कई बार लोग बोल देते हैं मूड के अकॉर्डिंग होता है, ये डिपेंड करता है आपके आईक्यू पे, ये डिपेंड करता है आपके म्यूजिक स्मार्ट होने या ना होने पे। अगर आप म्यूजिक स्मार्ट हैं तो आपको बीट्स में डिफरेंस पता लगता है। अगर आप म्यूजिक स्मार्ट हैं आप बांसुरी पकड़ेंगे और दो दिन में सीख जाएंगे कौन सा छेद बंद करने से कौन सा स्वर निकलता है। अगर आप म्यूजिक स्मार्ट हैं तो आप टेबल को भी ढोलक की तरह बजा सकते हैं। अगर आप म्यूजिक स्मार्ट नहीं है, ये वाला आईक्यू आप में नहीं है, तो आप जब गाना गाएंगे पड़ोसी आ जाएंगे, भाई बंद कर दे गाना गाना, बस बहुत हो गया, ठीक है। ये म्यूजिक स्मार्ट लोग जो होते हैं इनको म्यूजिक की पहचान होती है। अब ये जो म्यूजिक स्मार्ट लोग हैं इन लोगों को कहां जाना चाहिए? इनको अच्छे म्यूजिशियन बन सकते हैं, ये बहुत अच्छे सिंगर बन सकते हैं, ये म्यूजिक कंपोजर बन सकते हैं और ये म्यूजिक के टीचर बन सकते हैं, ऐसा हार्वर्ड गार्डनर साहब कहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं अगले तरह का स्मार्टनेस या अगले तरह का इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। बहुत ही काम का पॉइंट है, बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है। आपने देखा है कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप अपनी प्रॉब्लम 1/10 बताओ वो बाकी की पूरी अपने आप समझ जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं आपने अपना सारा दुख उनके सामने रोया और लास्ट में जाके आपका मन होता है यार ये कैसा आदमी, इसको समझ नहीं आ रहा है मैं जो कहना चाह रहा हूं। ये जो है ये कौन सा है? इसको कहते हैं पीपल स्मार्ट। ऐसे लोग जो दूसरों की बातों को कम शब्दों में ज्यादा समझ लें, ऐसे लोग जो दूसरों को समझाने में बड़े एडवांस हों, उन्हें कहा जाता है पीपल स्मार्ट। जो पीपल स्मार्ट लोग होते हैं वो दूसरों को समझने में बहुत अच्छे होते हैं और अपनी बात कहने में बहुत ही अच्छे होते हैं। इनमें एम्पथी होती है। एम्पथी मतलब अगले की बात सुनेंगे, अपनी बात कहेंगे और ये भी ध्यान रखेंगे सामने वाले के इमोशंस पे क्या असर होगा इसका। ये भी एक तरह का इंटेलिजेंस है। हार्वर्ड गार्डनर साहब कहते हैं कि ऐसे लोग जो होते हैं, ऐसे जो बच्चे होते हैं वो बहुत अच्छे टीचर बन सकते हैं, क्योंकि एक टीचर वो काम का ही नहीं है टीचर जिसको दूसरे की बात ही समझनी है, बस अपनी डफली बजाया जा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे ये लोग बहुत अच्छे काउंसलर बनते हैं, ये लोग बहुत अच्छे मैनेजर हो सकते हैं और जहां ये मैनेजर होते हैं वहां पर बहुत ही हेल्दी वर्कप्लेस होता है, कोई टॉक्सिसिटी नहीं होती वर्कप्लेस पे। फिर उसके बाद ये लोग सोशल वर्कर बन सकते हैं क्योंकि मैंने कहा इनमें एम्पथी होती है, ये समझ सकते हैं कि दूसरे का दर्द कैसा होता है। उसके बाद अगले तरह का इंटेलिजेंस जिसकी हार्वर्ड गार्डनर साहब बात करते हैं वो है इंट्रापर्सनल। ये सुपर इंपॉर्टेंट है। इंट्रापर्सनल क्या होता है? आपको पता है बहुत सारे लोग आज भी बहुत सारी डिग्रियां लेने के बाद भी ये नहीं बता सकते कि उन्हें खुशी किस चीज से मिलती है। उनसे ये पूछो डिग्री कर ली? हाँ। नौकरी लगे हुए हो? हाँ। सुबह से शाम जाते हो? कि हाँ। अगला सवाल पूछो खुश हो? जवाब नहीं होता उनके पास। रीजन क्या है? वो फेल हो गए सेल्फ स्मार्ट बनने में। दुनियादारी से सब सीख लिया, बहुत सारी किताबें खरीद ली, पढ़ी भी, सब कुछ किया, फेल हो गए खुद को समझने में। ऐसे लोग जो खुद को समझ पाते हैं हार्वर्ड गार्डनर साहब उनको कहते हैं सेल्फ स्मार्ट, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। ये भी एक आईक्यू है। इनको क्या होता है? इनको ये पता होता है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चीज खुशी देगी, मुझे किस चीज में मजा आएगा, मुझे किस एज में क्या करना है, ये इनको अच्छे से पता होता है। ऐसे लोग जो होते हैं इनके लिए कहा जाता है कि ये बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट बनते हैं, ये बहुत अच्छे राइटर बनते हैं, ये जब लिखने बैठते हैं तो बहुत अच्छे नॉवल लिखते हैं। इसका एग्जांपल है पौलो कोएलो, बहुत अच्छी बातें लिखी हैं उन्होंने। फिर उसके बाद फिलोसोफर बहुत अच्छे बनते हैं, ओशो। ओशो के अंदर इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल दोनों बहुत जबरदस्त था। फिर उसके बाद एंटरप्रेन्योर, ये बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर बनते हैं, जब मनाया तब एक काम छोड़ा, जब मनाया तब दूसरा शुरू किया, लोग कह रहे पागल है बर्बाद हो जाएगा, इन्हें पता होता है हमें क्या करना है लाइफ में। ये उनसे अच्छे हैं जिन्हें ये पता ही नहीं है कि वो सुबह से शाम तक क्यों दौड़ रहे हैं। अब अगर आपने अब तक ध्यान से सुना होगा तो आपको पता होगा यार हर बच्चा इंटेलिजेंस है, हर बच्चे में इंटेलिजेंस है। हम एक और तरह का इंटेलिजेंस भूल रहे हैं जिसे कहते हैं नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, इन्हें कहते हैं नेचर स्मार्ट। आपने देखा है आप बच्चे को यह सोच के डांट रहे हो कि तुझे मैथ्स क्यों नहीं आता, आप बच्चे को यह पकड़ के पीट रहे हो तेरे को पहाड़े लर्न क्यों नहीं हो रहे, तेरे को टेबल लर्न क्यों नहीं हो रही। अरे बच्चे को गार्डन में लेके जाओ, जिस बच्चे को आपने सोचा है कि इसको पढ़ाई नहीं आती, इसको अंग्रेजी नहीं आती, वो बच्चा सिर्फ पत्ते देख के बता देगा कि ये कौन सी फसल है। वो बच्चा खेत में हो सकता है, पेड़ देख के बता दे ये नीम का पेड़ है या बबूल का पेड़ है। और जिसको आपने टॉपर समझ रखा है वो आज भी ये सोच रहा हो कि तरबूज पेड़ पे लगते हैं। रीजन, इसके पीछे रीजन है नेचर स्मार्ट। जो बच्चे नेचर स्मार्ट होते हैं वो

नेचर के साथ बड़े अच्छे से कनेक्ट हो जाते हैं। ये नेचर के पैटर्न्स को इनको पता लगता है, हवा का रुख देखकर ये बता देते हैं बारिश होगी या नहीं होगी। ये जो बच्चे हैं इनके लिए हार्वर्ड गार्डनर साहब कहते हैं ये बहुत अच्छे बायोलॉजिस्ट बनते हैं, क्योंकि बायोलॉजिस्ट को घूमना पड़ता है। इन बच्चों को एनवायरमेंटल साइंस पढ़ना चाहिए, इन बच्चों को एग्रीकल्चर पढ़ना चाहिए, फार्मर किसान बहुत अच्छे बनेंगे। इन बच्चों को पशु चिकित्सक वेटरनरी साइंस पढ़नी चाहिए, बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये बच्चे जियोलॉजी में बहुत अच्छा करेंगे, ये बच्चे ज्योग्राफी में बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है, ये हुआ नेचुरलिस्टिक टाइप का इंटेलिजेंस। तो अब अगर आपने देखा हो तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जिस आईक्यू को सब कुछ मान के बैठे हैं वो तो खुद फॉल्टी है। जिस एजुकेशन सिस्टम के बेसिस पर बच्चों को हम गालियां देते हैं, ये कर वो कर, तूने कुछ नहीं किया ये नहीं किया, वो एजुकेशन सिस्टम तो सिर्फ तीन चीजों को जोड़ देता है। अंग्रेजी आनी चाहिए, मैथ्स फास्ट होना चाहिए, कैलकुलेटर बन जाओ बस, और तीसरे नंबर पर जीके बहुत अच्छा होना चाहिए। यहां तो हार्वर्ड गार्डनर साहब दूसरी बात कर रहे हैं। अब हार्वर्ड गार्डनर साहब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अगर नहीं होते तो शायद उनका कभी पब्लिश ही नहीं होने देते बाकी लोग। रीजन, जैसे ही ये आया सारे स्कूल वाले सारे कॉलेज वाले हिल गए अंदर से, सारे एजुकेशनिस्ट इसके अगेंस्ट हो गए खड़े, नहीं ये गलत है, ऐसे नहीं होता, ये है वो है। हार्वर्ड गार्डनर साहब कहते हैं सर जिंदगी आईक्यू से भी आगे है। तो हार्वर्ड गार्डनर साहब ये कहते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा फॉल्ट है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है? सबको एक ही पैमाने से नापना। दिस इज रॉन्ग। हार्वर्ड गार्डनर साहब कहते हैं इंडिविजुअल अटेंशन, इंडिविजुअल स्टडी पैटर्न। आप अपने बच्चे को ऑब्जर्व कीजिए, देखिए आपके बच्चे में 8 तरह का इंटेलिजेंस बताया, उनमें से कौन कौन सा इंटेलिजेंस है, उसके अंदर बच्चे को आप एनकरेज कीजिए। टीचर अगर उसको मारता है, उसको डांटता है उन चीजों के लिए जो आपके बच्चे में कम है, तो टीचर को बोलिए कि नहीं साहब हमारा बच्चा इसमें सिर्फ पास होगा, हमारा बच्चा अच्छा म्यूजिक में कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंग उसका करियर पाथ चूज कीजिए, फिर देखिए बच्चा कैसे चमकता है। होपफुली मैं ये समझा पाया हूंगा कि किसी भी बच्चे पर प्रेशर नहीं बनाना है। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, अगर आपको ये चीज समझ आई तो कमेंट्स में जरूर बताना, और उन लोगों से जरूर शेयर करना जो अपने बच्चों के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। जो 2 पिन वाला प्लग होता है उसको 3 पिन वाले सॉकेट में मत घुसाओ। आप डॉक्टर बने ये अलग बात थी, आपके बच्चे में 8 में से कौन से तरह का इंटेलिजेंस है ये बिना देखे उस पर मत डालो बोझ के तू भी तैयारी कर। मैं मेरे बच्चे को कभी नहीं बोलूंगा कि तू भी जूडो सीख क्योंकि मैंने जूडो सीखा था, नहीं भाई, देखो जाके उसमें बॉडी स्मार्टनेस है या नहीं है। मैं मेरे बच्चे को कभी नहीं बोलूंगा कि तू भी चल मेरे साथ कबड्डी खेल क्योंकि मेरे को कबड्डी अच्छा लगता है, मैंने घुटने फुड़वाए कबड्डी में तू भी फुड़वा, नहीं। ये सारी की सारी चीजें कॉपीकैट है, इसीलिए आप देखेंगे यंगस्टर्स डिप्रेशन में घूम रहे हैं, मम्मी पापा और ज्यादा डिप्रेस्ड है। रीजन, स्कूल कॉलेज ये लगे हुए डराने में, इफ यू विल नॉट डू दिस आपका बच्चा ये नहीं सीखेगा, ये नहीं सीखेगा, ये नहीं सीखेगा। हार्वर्ड गार्डनर साहब और भी बहुत सारी बातें बोलते हैं, इसके आगे की बातें कल के सेशन में करेंगे।

0: मैनरिज्म
1: जी
0: है ना, मैनरिज्म वो बहुत जरूरी है। सारी जिंदगी तानू रिमेन रखता, आबाद रखता,
1: ठीक कह रहे हो,
0: हमेशा आबाद रखता। और जेकर तुहाडे व्यवहार दा, तुहाडे मैनरिज्म दा कद उच्चा ना, तो तुसी थोड़ा भी गाओगे, कदी बिलो एवरेज, कदी एवरेज, कदी बहुत वधिया, भावे किसी वेले गल बन जाए तो किसी वेले ना बने
1: जी,
0: पर तुहाडा मान सत्कार प्यार मुहब्बत थोड़े प्रति बनिया ही रहेगा। तीसरा हैगा जिहड़ी सब तो वड्डी आमद है
1: जी
0: वो दुआवां लैणियां। जब लोगों की दुआएं लेते हैं हम लोग, हाँ, तो दुआएं व्यवहार से ही मिलती है। तो मैं बीच में, मैं जो तो प्रैक्टिस कर रहा सा हूँ, एक नवा एक चैप्टर मेरे जिंदगी जुड़िया। मैं दो साल पहलों यह एहसास होया, इन्ने साल गाने तो बाद
1: जी,
0: कि सुखविंदर सिंह चल तू भी मान लग कि तू अच्छा गाँवना, ठीक है, पर चीज कोई होर है जिन्हें तेन तरो ताजा करके रख्या होया।
1: जी
0: ते मैं अपने आप तो पूछा कि व्हाट इज दैट, इफ आई कैन कंसीडर माई सेल्फ ऑल्सो कि दैट, मान लो कि मैं अच्छा गाता हूं,
1: जी
0: की तेरी अच्छी गायकी ने रिमेन रखा तेन। मैं कहा नहीं, देर इज वन अनदर थिंग विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि वो उन्हें इनक्रीज करना पैना, वो आ व्यवहार, मैनरिज्म, एटिकेट्स,
1: जी
0: ते थोड़ा जा डिसिप्लिन। पूरा नहीं कलाकार मलंग होंदा, ज्यादा डिसिप्लिन च फिट नहीं पैंदा, बट थोड़ा जरूरी है, ते नाल दुआवां। तो वो पंजाब दा जिहड़ा तुसीं आपां शुरुआत कीती आ
1: जी,
0: उत्थों दे हर एक शख्स ने ना इन्ना रज के प्यार दिता
1: जी,
0: इन्ना रज के प्यार दिता कि कई जन्म भी मैं उन्हां दा ये एहसान कदी नहीं भुला सकता। उन्होंने मेरे सिरां ते इदां हथ फेरे ने, मेरे नाल फोन ते गल करके, मेरे नाल आमने सामने वार्तालाप च भी, उन्हां दी अखां च चमक, उन्हां दे चेहरे ते एक हल्का जिहा दर्द कि किते एक परेशान ते नहीं,
1: परेशान ते नहीं। मैं जिवें गल कीती है कि मैनू जिहड़ा 90 वालिआं नूं 80 वालिआं नूं चेते है तुहाड़ा उह गाणा, अज कौण परौण आया नहीं फुल खिड़ गए ने सूहे। जलंधर दूरदर्शन दा किस्सा सुणाओ तुसीं, अमृतसर तों जलंधर किवें आउणे हो ते दूरदर्शन ते गाउण दा सबब किवें बणदा, उह गीत किवें लिखिआ जांदा?
0: सरदार बशीर बद्र साहब दा एक शेर है
1: जी
0: कि कई सितारों को मैं जानता हूं बचपन से, जहां भी जाऊं मेरे साथ साथ चलते हैं। कितनी माओ की दुआएं, कितने सारे मेरे मेंटोर्स, किन्निया दुआवां, अलग अलग चेहरे, अलग अलग शहर, अलग अलग पिंड, दुकानदार, किसान, मलंग, संत, महात्मा ते छोटे मोटे गुंडे गांडे भी हाँ, ओ जीब कतरे जी भी
1: जी।
0: सबने दुआएं दी हैं अपने अपने तरीके से। चक्की जा कम कोई गल ही नहीं,
1: चक के रख, नाल
0: चक के रख, अही बैठे हैं,
1: नाल दे
0: अही बैठे हैं। ते दूरदर्शन च सरदार हरजीत सिंह जी, ये ना लेना बहुत जरूरी है
1: जी,
0: क्योंकि दूरदर्शन जड़ा वो एक एक बिल्डिंग है जिदे अंदर सरकारी फैसिलिटीज ने, मशीना ने, कैमरे ने, साउंड सिस्टम, सारा कुछ, पर चलाउंदा उन्हां नूं कोई विरला ही आ, जिहड़े विरले, जिदा थोड़ा मेरा पिंड मेरे खेत
1: जी।
0: ते ओ ए बहुत इंपॉर्टेंट गल है, तो तुसी क्योंकि इन्ना मैनूं पक्का पता कि जेकर मैं कोई एपीसोड मिस किया होगा तो, बट इन्ना मैं जानदा कि तुसी किसानां दी कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम या उन्होंने तरक्की बारे कोई भी गल की होगी तो उन्होंने ही भाषा च की होगी।
1: बिल्कुल ठीक कह रहे,
0: जबकि मैं कभी हजार बारी नोटिस किया कि बात हम किसान की कर रहे हैं और बोल इंग्लिश में रहे,
1: ठीक कह रहे हो,
0: तो उसको कैसे पता चलेगा,
1: पल्ले नहीं पैनी,
0: पल्ले नहीं पैनी। मैनू सब तो पहलो और पहले हले ही सुन दिया, उन्होंने एक असिस्टेंट होंगे हिमाचल तो
1: जी,
0: दविंदर पवार साहब, आ सुनिया शाम रिकॉर्डिंग। सब तो खूबसूरत गल ए हुई, धन धन श्री गुरु नानक देव साहब जी दे प्रकाश दिवस वेले ही उदन उन्होंने एक प्रोग्राम रिकॉर्ड करना सी, और सब तो पहलो उन्होंने मेनू ही सिलेक्ट किया।
1: अच्छा।
0: सुनी पुकार दाता प्रभ गुरु नानक जग माहे पठायो
1: जी,
0: पहला ही तो उन्होंने कहा कि इनू बच्चों के प्रोग्राम च पा दो।
1: अच्छा।
0: क्योंकि ना मुछ ना दाड़ी है, जड़ा गाउण तो पहलो समोसे मंगी जांदा वो किदां

0: album, and that album name is Vande Mataram. And the song, the first song has been directed by Bharat Bala. उसे ना वंदे मातरम मात तुझे सलाम. मैं कहता मैं लिखते दिया पर हूं तू आ जा रहा पर वो पीछे गार्डन में गणपति जी का मूर्ति भी था रहमान गया. मैं कहता मेरे चेहरे थे आज साहिर लुधान में जरा तुम मेरी नजर आने दिया वहा की गलत कैन यू विल यू प्लीज फॉरगेट दैट फॉर सम टाइम. आई हैव वन ऑफ द पर्सन फ्रॉम मुंबई ही अप्रोच्ड यू टू listen this person. I'm Sukhvinder Singh. I'm that person. Oh, yes. One singer was supposed to come from Mumbai. So you are the same one. I said, yes. But one song can you write for me? So I'm Thaiya Thaiya.
1: Achha.
0: And I'm saying Thaiya Thaiya. Sunone. Oh, Dedrati.
1: Ji.
0: So I said, what is harmonium? So he said, I don't have harmonium. Somehow he managed to arrange harmonium of his father.
1: Ji.

0: फाइव स्टार होटल जरखा जो भी है हाउ कैन यू टेक इट लाइटली यू हैव टू प्रिपेयर टू योर सेल्फ यू हैव टू सरेंडर टू योर सेल्फ टू द ड्यूटी तो मैं दरवाजे से तौलिए जहाँ बन के बैठा रहना सिर पर तेल ला के सवेर उठे अपना रियाज किया कोई मैं महान नहीं हाँ
1: जी
0: पर मैं करता वहां वो पावर तो मेरे मेरे कुत्ते को नहीं बर्दाश्त होंगी मेरी हूं दबका मार दिया तू वड्डन नूं खांदा नहीं
1: पर शौहरत थोड़ा नाम कितना वड्डा
0: I have not seen, I never have seen the size of my popularity. I never have seen. I take around 5 seconds to took showers, 5 to 10 seconds.
1: ठीक है.
0: बदल गिला हो गया मैंने कहा चज ना नाला मैं कोई नहीं यार एक मीह आ जड़ा वरदा ही रहिंदा मेरे ते
1: अच्छा
0: प्यार संगीत दुआवां
1: कोई खान पीन दे पहनन दे थोड़े नखरे है
0: मेरे कोई नखरे नहीं जी मैं कोई नहीं मेरे को तो मैं स्टेज होवे कि तो मेकअप से कब तक करना नहीं हुंदा
1: जी
0: बहुत होता कभी मुल्तानी मिट्टी मुंह ते ला के बह जाना मैं जो सुक जाती उदो ला लेना ते मेरे
1: घूमन फिरन दा शॉपिंग दा शॉपिंग दा कुछ
0: हुण तोरा फेरा हुण इना हो जांदा वा शॉपिंग दा हैगा मैनूं
1: कित्थों ज्यादा शॉपिंग करदे
0: शॉपिंग मैं जी मैं ज्यादातर जिथे बहुत सस्ता जा ते कलरफुल कपड़े हो कदी किराए मेरे को कुल मिला के 5% ब्रांडेड चीजा हो गया
1: जी
0: 5% ओ भी मैनूं लगता किसी ने गिफ्ट की हुई तो अदरवाइज मेरे जड़े मेरा अटायर जड़ा वा वो काफी सस्ता होंदा पहले तो मैं फिर भी वन सवने स्टेज ते पा लेना सा

0: हर समय तुहाडे संग तुहाडा अपना यह रेडियो सुरसंगम।
1: ओहो आज फेर नहीं लोड मिलिया।
2: की होया?
1: बस पूछना इंश्योरेंस कंफर्मेशन नहीं आई टाइम ते ते हुन फेर एक दिन वेट करनी पैनी है ते बच्चियां नु फेर नहीं मिल होना दो दिन।
2: ओहो रह गए ना फेर पिछे। मैं सुनया है सोनिक इंश्योरेंस दे मानस पहुजा अते रमन वड़ैच ते उना दी टीम इंश्योरेंस कंफर्मेशन बहुत जल्दी प्रोवाइड करवा दंदी है ते ओ ता पोर्टल भी सेट कर दंदे ने ताकि तुसी आप ही कंफर्मेशन दे सको बशर्ते तुहाडी इंश्योरेंस एक्टिव है। तुसी आज ही उना नु फोन करो ते जल्दी जल्दी गाल करके कोई हल लभो ताकि अगली बारी तुसी कार टाइम ते आ सको ते बच्चा नाल टाइम भी स्पेंड कर सको। फोन नंबर है मानस पहुजा 5878321208 या रमन वड़ैच 7807530001। सोनिक इंश्योरेंस।
3: मर्सिडीज कार खरीदना चाहते हो हुन कनाडा दे विच तुहाडे सपने सच होण दा समा आ गया। कनाडा